दशैंमा सीजी ब्रांड तथा सीजी मेलेरिया का होम अप्लायंसेस र होम एंटरटेनमेंट का सामान किंदा 1,02,000 रुपया सम्म को बचत। वॉशिंग मशीन में 6 केजी, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में 4 केजी, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 केजी सॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोवेव में कुकिंग किट र एसी में निःशुल्क जड़ा, साथ ही 0% ब्याज में सजिलो किस्ता। सीजी भरोसा नेपाली को उत्सव दशैं तिहार को एक्सपीरियंस लाइफ विथ सीजी।

0: सुनोस ना, आइले हम लोग आने में 8 बजे के छा।
1: इस समय को साथ में जेतु सुनसादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिकै रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको 5 घरेता कुनाको लाइन जैसी 15 जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुस् है।

0: मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी ताजा फलफूल तथा किराना सामान सुपथ मूल्य में पाइन का साथ ही विवाह व्रत बंद लगायत पूजा आजा शुभ कार्य को आवश्यक पड़ने संपूर्ण सामग्री उपलब्ध।
1: एन्जल फलफूल तरकारी तथा किराना पसल वालिङ आठ बगालेटोल
0: प्रोप्राइटर नारायण पंगेनी र पेमा डुमरे पंगेनी
1: मोबाइल नंबर 9847621380।